श्री रामलला भगवान की, श्री आनंदकंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की,

श्री गोविंद गीता अध्याय दो सांख्य योग। अश्रुपूरित नेत्रों से शोकमग्न अर्जुन अतिशय व्याकुल एवं व्यथित है। इन विषम परिस्थितियों में वह श्री कृष्ण का शरणागत शिष्य होना स्वीकार करता है तथा श्रेष्ठ कल्याणकारी एवं धर्मनिष्ठ उपदेश हेतु विनती करता है। श्री कृष्ण उस ज्ञानामृत की वर्षा करते हैं जो संपूर्ण गीता के सार स्वरूप 72 सूत्रों के इस अध्याय में समाया है। आइए इस दिव्य ज्ञान की सरस संगीतमय साधना करें।

सेनाओं के मध्य युद्ध विमुख वह शोक से स्तब्ध अर्जुन के सभी तर्कों को मात्र मोहजन्य बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवित मृत का शोक करना महज अज्ञानता है। मधुसूदन कहते हैं

श्री भगवान आत्मा एवं देह के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि भौतिक देह असत है, नाशवान है, परंतु आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है, शाश्वत है। यह भौतिक देह तो वस्त्र की भांति है, जिन्हें पुराना होने पर बदल दिया जाता है। ऋषिकेश कहते हैं।

हे अर्जुन, युद्ध से विमुख होना अपने स्वधर्म का त्याग करना है। इस अज्ञानता पूर्ण कृत्य से तुम मात्र अपयश एवं उपहास के पात्र बनोगे। अतः युद्ध के लिए तैयार हो।

श्री भगवान अपने शरणागत शिष्य को स्थिर बुद्धि के साथ फल आसक्ति से विहीन निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। जनार्दन कहते हैं।

कुरुनंदन अर्जुन प्रश्न करता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, समाधिस्थ की क्या भाषा है? प्रत्युत्तर में मधुसूदन कहते हैं कि काम, इच्छा, राग, भय व क्रोध से मुक्त, शुभ अशुभ, सुख दुख व हानि लाभ में एक समान रहने वाला आत्मसंयमी योगी ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय लीन पुरुषों में क्रमशः काम, क्रोध, मोह एवं स्मृति भ्रम उपजते हैं, जिससे बुद्धि नाश एवं अधोपतन हो जाता है। श्री गोविंद के शब्दों में

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

0: वनस्य सुते देवी यमुने त्वं महानदी ऋषि सिद्धि सुरैर्जुष्टे गृहाणार्घ्यं नमो स्तुते गृहाणार्घ्यं नमो स्तुते।
1: मैं उपत्यका यमुना यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री में आपका स्वागत करती हूँ। ये बाहें फैलाकर भारत भूमि की रक्षा करता पर्वतराज हिमालय और इसके विशाल वक्ष पर मोतियों की लड़ियों की तरह झूलती नदियां, तेज दूध की सिधार गंगा की और दुबली पतली दुधारा यमुना की। यमुना जो पहाड़ों में पहले जन्म लेने के नाते गंगा की बड़ी बहन है। तो यहाँ की कहानी सुनोगे? उत्तर दिशा में हिमालय की कोख से यमुना के जन्म की, यमुनोत्री की।
2: यम की बहन यमी सूर्य और संज्ञा की पुत्री थी। यमी के जन्म से पहले ही संज्ञा के किसी अनाचरण पर सूर्य ने उसे श्राप दिया था, तेरी पुत्री धरती पर एक उच्छृंखल नदी बनकर जन्म लेगी।
1: यमुना बनी, लेकिन सामान्य नहीं रही। यमुना की गाथा द्वापर से भविष्य तक संस्कृति, इतिहास और संस्कार का पर्याय बन गई। लेकिन जो भी गंगोत्री और हिमालय में स्थित अन्य धामों की यात्रा कर यमुनोत्री पहुंचता है, उसे पहली बार में तो निराशा ही लगती है। सुप्रसिद्ध लेखक श्री विष्णु प्रभाकर को भी कुछ ऐसा ही लगा था, किंतु फिर
3: हिमालय के चार प्रसिद्ध तीर्थ हैं यमुनोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चारों में गए हूँ। यमुनोत्री में जब पहुंचा था भयानक मार्ग को पार करता हुआ, तो मुझे बहुत निराशा हुई थी। तो ये सूर्य की बेटी है और यम की जो भगनी है, वहाँ मानसल सौंदर्य की आशा करना व्यर्थ होता है। यमराज ने अपनी बहन की रक्षा के लिए जो चारों तरफ पहाड़ खड़े किए हैं, वो वैसे ही हैं जैसे यमदूत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, तो घाटी में मैंने देखा कि पत्थरों के बीच में से कल कल छल छल की आवाज़ आ रही है और बीच में से हल्का हल्का पानी

0: उछलता उछलता चला जा रहा है। तो उसी की तरफ देखते देखते मेरी दृष्टि फिर उधर गई, ऊपर दूर, पहाड़ बहुत ऊंचा है, बंदर पूछ उसका नाम है, उसकी एक कहानी है। तो उस बंदर पूछ पर्वत से यमुना का उद्गम होता है। तो मैंने देखा कि वहां से बहुत ऊपर देखने पर दो धाराएं हैं जो फुहार की तरह से उड़ रही हैं। बड़ा सुंदर लगता है वो फुहार उड़ना। एक का नाम है कालिंदी, एक का नाम यमुना। नीचे आकर वो दोनों की दोनों मिल जाती हैं और पत्थरों के बीच में से होती भी चलती हैं। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि यमुना का कोई बहुत बड़ा वैभव है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही गरुड़ गंगा अथाह जलराशि लेकर के उसमें समा जाती है। तब जो है यमुना का असली रूप प्रकट होता है। श्याम वर्ण है यमुना का, वहाँ श्याम जल है, और फिर वो पूरे उद्दाम वेग से आगे चलती चलती चलती चली जाती है।
1: यमुना टिहरी गढ़वाल में 6,330 मीटर ऊंचाई पर प्रकट होती है। कलिंद पर्वत से आगे चलकर कालिंदी में ऋषिगंगा, उमा, हनुमान गंगा आदि सात धाराएं आ मिलती हैं। 11 झरने इसे बंदरपूंछ से विदा देते हैं। कलसी में टौंस नदी इससे गले मिलती है, जिसमें यमुना से भी अधिक पानी है। और तब यमुना नाचती, बल खाती, छींटे उड़ाती, झरनों में झरती, घाटियों, चट्टानों, गहरी खाइयों और पहाड़ों में रास्ता बनाती, तेजी से मैदानों की ओर चल निकलती है। धर्माधिकारी डॉक्टर विद्याधर यमुना के इस वेग की शास्त्रोक्त व्याख्या करते हैं।
2: यमुना के स्वरूप के विषय में सबसे प्राचीन सामग्री अर्थात ऋग्वेद संहिता के एक मंत्र को लेते हैं, जिसकी व्याख्या में यास्क ने, जो कि ईसा पूर्व 6 शताब्दी में हुए हैं, बहुत अच्छा स्वरूप हमारे सामने रखा है। यमुना के संबंध में इसमें प्रयुवति गच्छति तिवा, ये दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं। अनेक नदियों से यह मिलती रही, फिर भी अपना अस्तित्व इसने कभी भी नहीं खोया। इसको देख करके युवती के दर्शन से जिस प्रकार आह्लाद या प्रसन्नता या स्फूर्ति उत्पन्न होती है, इसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते थे, ऐसा यास्क के कथन का सारांश निकाला जा सकता है।
1: शिवालिक की पहाड़ियों में घूमती विचरती यमुना 130 किलोमीटर लंबी पर्वतीय यात्रा के बाद फैजाबाद में मैदानों में प्रवेश करती है। खनिज, औषधियों और उपजाऊ मिट्टी से भरा मंगल घट अब यमुना खेतों में उलट देती है। इस जल की बाहें दूर दूर तक फैलाने के लिए इससे दो महत्वपूर्ण नहरें निकाली गई हैं। पश्चिमी यमुना नहर, जो अंबाला, करनाल, रोहतक और हिसार आदि जिलों को सींचती है। इस नहर का काम 500 वर्ष पूर्व फिरोज शाह तुगलक ने आरंभ करवाया था। तब से आज तक ये कई बार बंद होती, खुलती, दूर तक फैले खेतों में हरा सोना सींच रही है।

इसी स्थान पर लगभग 200 वर्ष पहले पूर्वी यमुना नहर निकाली गई, जो दोआब नहर कहलाती थी। आज ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के विस्तृत इलाकों को सींचती है। पानीपत के युद्ध देखती, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती यमुना कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के शस्त्रों की झनकार और पार्थसारथी कृष्ण का गीता का उपदेश अपने अंदर समोती है। इसके दूसरे तट से कुछ ही दूर है मेरठ, जहां 1857 में मंगल पांडे ने देश की आजादी का पहला बिगुल फूंका था।

और यही सब देखती समझती रीछती खींचती यमुना आ पहुंची है 7 बार उजड़ने और बसने वाली दिल्ली में। यहां अब मैं उपत्यका आपसे विदा लेती हूं।

अपने 16 पराजयों का बदला दिल्ली से लिया तो यमुना उसके घावों पर शीतल जल छिड़कने के अलावा कुछ भी न कर पाई। अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, सबका इतिहास बांटती रही यमुना इब्न बतूता के साथ कि आ पहुंचाते मुरलंग। गांव, कूचे, खेत, खलिहान, महल, झोपड़े उजाड़ता, दिल्ली के खून से यमुना का पानी लाल करता।

0: लेकिन शेरशाह के बाद दिल्ली का भाग्य फिर जगा। यमुना फिर से राग रंग में नहा गई। शाहजहां यमुना का मतवाला हो गया। लाल किले के दीवाने खास से लेकर पूरे चांदनी चौक में यमुना नहर बहने लगी। बहादुर शाह जफर और अनेक दिग्गज साहित्यकारों ने एक नई तहजीब, एक नई भाषा, प्रेम और राष्ट्रभक्ति की नई इबारत गढ़ी। और बहुत कुछ होता रहा है यमुना के किनारे दिल्ली में। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर शमीम हनफी के शब्दों में,
1: यमुना का जिक्र उर्दू में यानी गद्य और पद्य दोनों में कई लेवल्स पर आया है, कई स्तरों पर आया है। एक तो जैसे यमुना एक नदी के तौर पर, एक फिजिकल फिनोमेना बिल्कुल, ये कि जो एक दृश्य उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये दूसरा है यमुना एक सिंबल के तौर पर, सिंबल ऑफ लव, ऑफ ब्यूटी, और ये मतलब टाइम को एक तरीके से एक टाइम में सफर करती हुई एक सच्चाई उसके सिंबल के तौर पर। तीसरा एक यमुना एक आर्किटाइपल इमेज के तौर पर, और चौथा है कृष्ण भक्ति के एक इशारे के तौर पर। तो इस तरह के कई लेवल्स मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो समझिए कि जब से उर्दू शायरी की तारीख शुरू होती है अब तक आप देखें तो ये सिलसिला जारी है।
0: और फिर आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने आठवीं दिल्ली बसाई, नई दिल्ली। अंग्रेजों की दिल्ली के प्रमाण हमें कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली अभिलेखागार के अनेक चित्रों में मिलते हैं। आजादी की लड़ाई में दिल्ली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी वस्त्रों की होली से लेकर शहीद हो जाने तक का इतिहास रचा। यमुना ने फिर देखा सदियों की गुलामी का सूर्यास्त और स्वराज का सूर्योदय।
2: आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया, वो चीजें हमारे कब्जे में आई। दिल हमारा खुश होता है एक मंजिल पर हम पहुंचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत नहीं रहेगी। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है।
0: और इसी दिल्ली में एक भारतीय ने ही बापू के प्राण हर लिए थे। यमुना के किनारे ही बनी है महापुरुषों की समाधियां, जहां देश का इतिहास सो रहा है। अगर हम कहें कि आधुनिक युग में नवीं दिल्ली बस रही है तो अतिशयोक्ति न होगी। अभी तक यह शहर मुख्यतः यमुना के पश्चिमी तट पर बसा हुआ था। अब कई पुलों से जुड़ा उसका पूर्वी किनारा ऊंचे नीचे मकानों के समूहों से पटता जा रहा है। आजकल इसके दोनों किनारों को जोड़ता 16 ट्रैक वाला देश का सबसे बड़ा पुल निर्मित हो रहा है। और पुलों की भी योजना है। आबादी के विस्फोट के साथ साथ यमुना पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ओखला से वजीराबाद तक अनेक नाले प्रतिदिन 55 करोड़ लीटर गंदगी उलीच रहे हैं। यमुना में पानी की कमी होते देख छोटी बहन गंगा को दिल्ली लाया गया। तेजी से बढ़ती बहुसंख्यक प्यास का अंत कहां जाकर होगा? क्या गंगा यमुना मिलकर भी जरूरत भर स्वच्छ पीने योग्य पानी दे पाएंगे?

0: मैं श्यामा हूँ, मथुरा की रहने वाली। यमुना नदी से भेंट करने मैं शहर से दूर कछारों पर निकल आई हूँ। वो आ रही है यमुना, हिंडन नदी का जल साथ लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती। देख रही हूँ कि मैया किस तरह जनजीवन को पाल रही है। काछी, कुमार, मल्लाह, धोबी, रेती ढोने वाले सभी अपने पेट पालन के लिए यमुना पर निर्भर हैं।
1: अच्छा, ये यमुना जी से आप लोग ये कपड़े धो के कितनी कमाई कर लेते होगे महीने में एक परिवार?
2: मतलब है साहब, कमाई तो इसमें कुछ नहीं है, मेहनत ज्यादा। हमको जो 20 रुपए रोज भी नहीं पड़ते, 3 दिन यहाँ पर लगे रहते हम, माए बाल बच्चों समेत।
1: भैया आप तो ये नाव चलाते हैं, आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम भूलाल।
1: अच्छा, ये यमुना मैया तो आपका पेट पाल रही हैं, परिवार का पेट पाल रही हैं, तो कैसे आप, आपको क्या लगता है, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं?
3: संतुष्ट होने का तो ये साहब, संतुष्ट तो होते हैं हम लोग, अगर यमुना में पानी पूरी तौर से साफ तरीके से अगर पानी रहे तो यात्री परदेसी आए तो हमारा धंधा रोजगार भी थोड़ा चले और उसके चलने के साथ साथ हमारे बच्चों का भी पालन हो।
1: तकरीबन एक दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी?
3: कमाई का तो सरकार ऐसा है कि यमुना में अगर साफ सफेद अच्छी तरीके से बनी रहे तो हम लोगों का पेट पालन हो सकता है।
0: पूरे देश में नदियों के अद्भुत चित्र व मूर्तियां मिलती हैं। मथुरा राजकीय संग्रहालय की निदेशक श्रीमती पुष्पलता ठकुरेल यमुना की कला छवियों का वर्णन इन शब्दों में करती हैं।
4: हमारे यहाँ नदियों को पवित्र देवियों के रूप में प्रारंभ से ही पूजा जाता है। यद्यपि कला में इन देवियों का अंकन बहुत बाद में हुआ है और मथुरा कला में यमुना का अंकन गुप्तकाल एवं विशेषकर मध्यकाल में हुआ है। एक पैनल हमारे संग्रहालय में ऐसा है जिसे कृष्ण जीवन के कथानक से हम जोड़ते हैं। उसमें यमुना को मात्र नदी के रूप में प्रदर्शित किया है, यमुना को देवी के रूप में मध्यकालीन द्वार शाखाओं पर दोनों किनारों पर एक ओर गंगा और दूसरी ओर यमुना का अंकन किया जाता था। इन पर यमुना को स्त्री रूप में मानवीकरण रूप देते हुए पूर्ण आभूषणों से सुसज्जित ऊपर से यानी कि सिर से लेकर पैरों तक वस्त्र एवं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित दिखाया है। जिस प्रकार कलाकार गंगा को प्रदर्शित करने के लिए मगर का अंकन करता है, उसी प्रकार यमुना का वाहन कच्छप दर्शाया गया है। कभी कभी यमुना को कमल नाल लिए भी दिखाया है। यमुना की मध्यकालीन कुछ प्रतिमाएं हमें महावन के जैन 84 मंदिर से मिली हैं। ऐसी कोई प्रतिमा मैंने अभी नहीं देखी जहां इन देवियों को बैठे दर्शाया गया है।
0: मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, पूरी की पूरी ब्रजभूमि यमुना का स्पर्श पाकर आम्र कुंजों, करील की झाड़ियों, कृष्णचूड़ा, जवाकुसुम, चंपा और कदम्ब के झुरमुटों की रम्य स्थली बन गई है। यहाँ आकर कृष्ण, राधा और यमुना एकाकार हो उठते हैं। द्वापर की स्मृतियां कलियुग का द्वार खटखटाने लगती हैं। इस पुरातन तीर्थ भूमि के पास ही स्थापित किया गया है आधुनिक विकास का तीर्थ तेल शोधक कारखाना। यमुना के किनारे उद्योग धंधे पनप रहे हैं। अब मैं श्यामा सूरकुटी में यमुना मैया का एक बार फिर स्वागत करने और यहाँ की महिमा मई धरती से आपका परिचय कराने के लिए प्रस्तुत हूँ। सूरकुटी से आगरा कुल 22 किलोमीटर ही तो है। यहाँ भक्त कवि सूरदास ने

ने बनाई थी और मान्यता है कि सूर सागर के अधिकांश पद यही यमुना तट पर रचे गए। यहाँ पर सूर स्मारक संस्थान ने एक अंध विद्यालय और विद्यार्थी निवास की व्यवस्था की हुई है

0: यमुना जी के किनारे किनारे बढ़ती मैं सिकंदरा और अमर सिंह राठौर का अश्व स्मारक देखती 450 साल पुराने आगरा शहर के किले पर आ पहुंची हूं। यहां ग्वालियर के राजा ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। यहां की लाल दीवारों में हुमायूं का परपोता शाहजहां वर्षों अपने बेटे औरंगजेब की कैद में रहा। यहीं से वो देखा करता था यमुना पार अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल का अमर स्मारक ताजमहल। मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी क्यों बनाया? पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री शंकर नाथ कहते हैं,
1: अपने साम्राज्य को बढ़ाने, उसकी सुचारू रूप से देखभाल करने, ट्रेड अथवा व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के दृष्टिकोण से उन्हें यह स्थल ज्यादा उपयुक्त लगा। उनको आगरा में जमुना जैसी एक ऐसी नदी मिल गई जिससे वो यहाँ बैठ करके सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि यहाँ से बंगाल तक आवश्यकता पड़ने पर नौकाओं के द्वारा मुगल सेनाएं यहाँ से बंगाल तक धावा मारती थी अथवा यहाँ से उत्तर की तरफ देहरादून के इलाके तक जाती थी।
0: मथुरा से आगरा के बीच की भूमि अनेक धर्मों और संस्कृतियों के मिलन की भूमि रही है। डॉक्टर ब्रिजवल्लभ मिश्र,
2: ईसा के जन्म से कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन साहित्य को देखने से लगता है कि यमुना उस समय इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये था कि इसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था और फिर यहाँ मथुरा नाम बनने से पूर्व ही जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का और वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा केंद्र स्थापित हो गया। जैन धर्म की मूर्तियां बनाने के बहुत बड़े कारखाने और बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाने के बहुत बड़े कारखाने यहाँ बने। यहाँ से मूर्तियां बन बन के बाहर जाती रहीं।

यमुना यात्रा में आगरा तक आई और उससे आगे की यात्रा में मैं आपके साथ हूं। मेरा नाम तीर्थराज है। प्रयागराज संगम तक पहुंचते पहुंचते अनेक नदियां यमुना में आकर मिल जाती हैं। बेनगंगा, सेंगा, चंबल, जो अपने साथ क्षिप्रा, काली सिंध और बनास की जलांजलि लाई थी। इटावा के पास जयचंद और शहाबुद्दीन गोरी की मुठभेड़, कालपी के पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और तांतिया टोपे का साहस, सब यमुना ने देखे। कालपी से आगे बेतवा और केन नदियां उसमें आ मिली हैं। यमुना का वेग बढ़ गया है, वह गंगा से मिलने को आतुर है। लेकिन एक छोटा सा गांव कोसम, जो कभी वैभवशाली कौशाम्बी था, बस अब खंडहर बचे हैं और बची है अशोक की एक अकेली लाट, यमुना की यादों की साक्षी। अब आ गई यमुना राजापुर में। भक्त शिरोमणि तुलसीदास के रामचरित मानस की रचना भूमि, इतिहास जैसे अतीत है, उसी तरह यमुना की 1306 किलोमीटर की यात्रा भी अतीत होने जा रही है। बड़ी बहन यमुना अपना अथाह श्याम जल

0: वरना गंगा को सौंप कर विलीन हो रही है। यमुना, गंगा और गुप्त सरस्वती तीनों का मिलन शतकूप बीच तीर्थ बन गया है। श्री केशव चंद्र वर्मा,
1: राज साहब ऐसी बातें कहते थे कि जो सूत्र के रूप में होती थी, उन्होंने एक बार ये कहा था कि गंगा यमुना की जो द्वाबे की संस्कृति है, सच पूछो तो यही भारतीय संस्कृति की मूल है। इसी के आधार पर हम हमेशा भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। जो कुछ भी इसके अलावा इस देश में घटित हुआ है वो इसी से कहीं न कहीं प्रभावित है। उसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहीं कहा है यमुना का वर्णन करते हुए कि वह रस की नदी है। कृष्ण और राधा का जो भारतीय प्रतीक है वो यमुना को ही समेट कर चलता है। यमुना के किनारे किनारे प्रयाग तक बहुत कुछ आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें उस संस्कृति की अनेक छवियां जगह जगह अंकित हैं।
2: मैं कलिंग सुता हिमालय की गोद से निकलकर यहाँ वहां पहुंची हूँ। थम गई है जैसे मेरी यात्रा, रुकी हुई हूँ गहरी धीर चुपचाप और हर हराती हुई आ रही है उज्जवल वर्णी गंगा बहन। हम दोनों मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और नीचे नीचे बह रही है बहन सरस्वती। हम तीनों का ये मिलन कैसे पवित्र न होता, कैसे न बन जाता ये स्थल तीर्थराज प्रयाग।
0: संगम के इस पवित्र मिलन को साक्षी बना माता कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया था, अचल हो अहिवात तुम्हारा जब लगे गंग जमुन की धारा। शाश्वतता के इस प्रमाण को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उनकी चर्चा श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल ने की, जो गंगा कार्य योजना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक हैं।
3: यमुना निर्मलीकरण की एक योजना सरकार के विचाराधीन है और इस योजना को सहायता देने के लिए जापान सरकार आगे आई है, उनके साथ बातचीत चल रही है और हमें आशा है कि शीघ्र ही मथुरा, वृंदावन, आगरा और हरियाणा एवं दिल्ली में भी इस दिशा में कुछ काम होगा। जहाँ तक इलाहाबाद का सवाल है, मैं यह कहूँगा कि जैसे नदियाँ समाज की शिराएं हैं उसी प्रकार से सीवर शहर की धमनियाँ हैं। तो जब तक सीवर लाइनें साफ रहेंगी, लोग इन्हें गंदा नहीं करेंगे, इनमें कूड़ा करकट नहीं डालेंगे तो निश्चय ही यह गंदगी पंपिंग स्टेशनों तक जाती रहेगी और हम इसे निरंतर पंप करते रहेंगे और नदियों में मल जल जाने से रुकेगा, जिससे कि शहर का स्वास्थ्य लाभ होगा और हमारी नदियां भी स्वच्छ होंगी।
4: इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुतो त्रिस्तोमं सजता परुष्ण्या ऐसे कन्या मरुद्रभे वितस्तया रुजी की।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति।

0: महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: शिव महिमा के प्रभाव से देवराज नामक ब्राह्मण के उद्धार की कथा आप सुन चुके हैं। आज सुनिए शिव पुराण के पहले सर्ग की दूसरी कथा।
1: महाभाग दूसरी। आप सर्वज्ञ हैं। देवराज ब्राह्मण की कथा सुनकर मेरा मन आनंद से भर उठा है, अतः शिव के चरणों में आस्था जगाने वाली दूसरी कथा भी सुनाइए।
2: शौनक सुनो, समुद्र के निकट एक ग्राम था जहां दुराचारी लोगों का निवास था। वे ना तो देवताओं में विश्वास करते थे और ना भाग्य पर। वे सभी पशु बुद्धि वाले लोग थे। वहां एक समय बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी शील स्वभाव वाली अत्यंत सुंदरी थी, किंतु बिंदुक वैश्यगामी और कुमार्ग पर चलने वाला था। उसके दुष्प्रभाव से आगे चलकर उसकी पत्नी चंचला भी दुराचारिणी हो गई, किंतु शिव पुराण की महिमा से उसका उद्धार हुआ और मोक्ष प्राप्त करके वो महादेवी पार्वती की प्रिय सखी बन गई।
1: हे सूची, ये अत्यंत मनोरम कथा जान पड़ती है। वो चंचला नामक स्त्री देवी पार्वती की प्रिय सखी कैसे बनी?
2: शौनक, इस मनोहारी कथा को सुनने के लिए हम भगवान शंकर के निवास कैलाश पर्वत पर चलते हैं, जहां देवी उमा अपनी सखी चंचला के साथ विराजमान है।

0: सखी चंचला, धीमा तेश्वरी, भगवान महेश्वर के इन गणों के बीच तुम्हें अटपटा तो नहीं लगता?
1: बिल्कुल नहीं देवी, आपके चरणों में मुझे कितना आनंद आता है मैं बता नहीं सकती। मृत्यु लोक में तो मैं सुख की कल्पना तक नहीं कर सकती थी माते।
0: चंचला,
1: आज्ञा महादेवी।
0: क्या तुम अपने मृत्यु लोक के जीवन के बारे में मुझे बताना चाहोगी?
1: अवश्य माता जगदम्बी। मादे, मैं बिंदुक नामक ब्राह्मण की पत्नी थी जो बुरी संगत के कारण कुमार्ग पर चलने लगे थे। उनकी मृत्यु के बाद विधवा होकर मैं अपने बंधुजनों के साथ रहने लगी। मैं सुंदरी और युवा थी।
2: चंचला, देवी चंचला।
1: कौन है?
2: मैं हूँ, जयदेव।
1: जयदेव, आप पधारिए।
2: एक विशेष काम से आया हूँ देवी।
1: जी, कहिए।
2: तुम्हें पता है, पास के गोकर्ण में एक विशाल मेला लगने वाला है। गांव के अनेक लोग जा रहे हैं वहाँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
1: जी, मैं मेले में?
2: हाँ, थोड़ा मन बहल जाएगा।
1: किंतु मैं अकेली।
2: अरे चिंता की क्या बात है, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। और फिर गांव के अनेक लोग भी तो हैं।
1: किंतु वहाँ रहने की व्यवस्था?
2: उसका सब प्रबंध हो चुका है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बस तुम हाँ कर दो।
1: किंतु
2: देखो, अब किंतु परंतु कुछ नहीं। क्या तुम मेरा इतना सा अनुरोध स्वीकार नहीं करोगी? तुम्हारे मौन को स्वीकृति समझूं? ठीक है, मैं कल सवेरे तुमको लेने आऊंगा, तैयार रहना।
1: परंतु गांव के और लोग भी तो हैं, इसमें क्या बुराई है?
2: देखो चंचला, यहाँ बहुत भीड़ है। अब हाथ पकड़ लो, अन्यथा बिछुड़ जाने का डर है।
1: अच्छा ठीक है।
2: देखो कितना मनोरम तट, कुछ देर विश्राम कर ले, फिर स्नान करके वापस लौट चलेंगे।
1: हाँ।

0: देखिए उस घाट पर महिलाएं स्नान कर रही हैं, मैं उधर ही चली जाती हूँ।
1: ठीक है, लेकिन पानी में दूर तक ना जाना, जहाँ मगर भी हैं।
0: अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँ।
1: मेरे स्थान संपूर्ण कर दो गंगे, बहुत बहुत शीतल जल है, आज तो स्नान में मजा आ गया। चंचला तू उधर कहाँ जा रही है? चंचला चंचला उधर उधर मगर है, वही तुम्हारा निकट। ठहरो ठहरो मैं आ रहा हूँ, तुम वही रहना। चंचला मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, दोनों हाथों से। इधर इधर पानी का बहाव अधिक तीव्र है। चंचला डरो नहीं, चंचला मुझे कच्चे पकड़ लो। ऐसे ही ठीक है, बस बस अब कोई भय नहीं।
0: तुमने मुझे बचा लिया है, अन्यथा मैं तो। तुम मेरी रक्षक हो, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूल सकती।
2: Jaydev.

0: प्यार किया है, मुझसे पाप हुआ है, मुझे मुझे क्षमा करो देव, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।
1: चंचला,
2: जयदेव तुम?
1: हाँ मैं, क्या हुआ?
2: जयदेव तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
1: लेकिन क्यों?
2: मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी, बस और कुछ नहीं।
1: तो क्या तुम यहीं रहोगी?
2: पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे डर लगता है।
1: चंचला
2: हूँ, पर पुरुष का साथ भी अनुचित है।
1: संचला, मुझे अब भी पराया समझती हो?
2: हाँ, आगे मत बढ़ना, वरना मैं मशहूर मचा दूंगी।
1: अच्छा जाता हूँ मैं,
2: लेकिन
1: ये तो बता दो, मेरा अपराध क्या है?
2: अपराध तुमने नहीं, मैंने किया है जयदेव, मैंने किया है। लेकिन लेकिन मुझे प्रायश्चित करना होगा। जयदेव मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे अकेले पर छोड़ दो। जाओ जयदेव, मुझसे मिलने का कभी कभी व्यर्थ में ना करना।

0: आपका प्रायश्चित कैसे करूं?
1: कीर्तन कैसा है? हे प्रभु, मुझे अपनी शरण मिले।

कैसा मनोरम वातावरण है, मन जैसे नहा गया हो। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय, नीलकंठ महादेव की जय।

0: बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो?
1: महाराज, मैं नहीं जानती कि कहाँ जाऊँ।
0: क्यों, क्या तुम्हारा कोई नहीं है?
1: कोई नहीं है स्वामी जी, अकेली हूँ, कोई आसरा नहीं। क्या आप मुझे यहाँ ठहरने की अनुमति देंगे?
0: बेटी, ये शिव धाम है, यहाँ के द्वार सबके लिए खुले।

0: नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
1: स्वामी जी, देवी चंचला सदगति को प्राप्त हुई,
2: शिव उपासना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा।

0: हे महाभागे चंचला, तुमने मृत्युलोक में मेरी स्तुति करके ही ये पुण्य अर्जित किया है। तुम अनंत काल तक शिवलोक में रहने की अधिकारिणी हो, तुम्हारी और क्या इच्छा है?
1: हे शिव शंकर, आपके चरणों में बने रहने की इच्छा से बढ़कर भला और कौन सी इच्छा हो सकती है?
0: तथास्तु। महादेवी पार्वती, क्या आप चंचला की पुण्य आत्मा को अपनी सखी के रूप में स्वीकार करेंगी?
1: इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है महादेव? आपकी ये इच्छा मेरे मन के अनुकूल है देव। सखी चंचला, तुम्हारी कथा सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, तुम्हें कौन सा वर दूं?
2: माता जगदम्बे, मुझ पर आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है। यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तो मेरी एक कामना और पूरी कर दीजिए।
1: कहो, निसंकोच कहो चंचला।
2: हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति देव बिंदुक इस समय कहाँ है मैं नहीं जानती। न जाने वो किस गति को प्राप्त हुए।
1: बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। वो इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में पड़ा हुआ है, अपने शेष पापों का फल भोग रहा है।
2: महादेवी, मैं केवल यही वर मांगती हूँ कि मेरे पति का अब उद्धार कर दीजिए।
1: तुम्रु,
3: आज्ञा मातेश्वरी।
1: तुम शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक भयंकर पिशाच रहता है, उसे किसी भी प्रकार शिव पुराण की कथा सुनाओ। कथा सुनने से वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा।
0: जैसी आज्ञा महादेवी।
4: किसने किसने दुस्साहस किया कि मुझे आदेश दे? मैं संसार के सभी नियमों को तोड़कर सर्वनाश की ओर ले जाने वाला महापिशाच हूँ।
5: हे पिशाच, लो शिव का पाश, होगा तुम्हारी घिनौनी वृत्ति का नाश।

0: अरे अरे बचाओ, मरा रे। अरे अरे ये कैसा बंधन है, मुझे इससे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो मुझे इससे।
1: तुम्हें मुक्त करने का हमें अधिकार नहीं। चलो, देव तुम्ब्रू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: हाँ, हे पिशाच, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इस योनि में अनेक दुख क्यों भोग रही है? क्या तू इससे मुक्ति पाना नहीं चाहता?
0: मेरी मुक्ति भला कैसे संभव है? जीवन भर अनेक कुकर्म किए, उनका फल तो मुझे भोगना ही होगा ना।
2: पिछले जन्म की तेरी पत्नी चंचला शिव जी की कृपा से माता पार्वती की परम सखी बन गई है। माता जगदम्बा के आदेश से हम तुझे शिव पुराण की कथा सुनाने आए हैं। शांत चित्त होकर सुनो।

0: आपके सुखमय वचनों से मेरा मन शुद्ध हो गया है। मैं भगवान शंकर के चरणों में अपना शेष समय बिताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा विधान बताइए जिससे मुझे भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हो।
1: हे बिंदु, शिव महिमा के सुनने से तुम्हारी आत्मा ना केवल पिशाच योनि से ही मुक्त हुई है, बल्कि पूर्व जन्मों के सभी पापों से तुम मुक्त हो गए हो। इसलिए अब तुम शिवलोक पहुंचने के अधिकारी हो गए हो। चलो मेरे साथ आओ।
0: मैं कृतार्थ हुआ भगवंत।

0: हे माता पार्वती, आपके आदेश का पालन कर मैं बिंदुक नामक व्यक्ति की आत्मा को ले आया हूँ। बिंदुक, माता पार्वती को प्रणाम करो।
1: हे माता पार्वती, मुझे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं होता। मैं माता बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए महादेवी, स्थान दीजिए।
2: मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी चंचला के सत्कर्मों का ही फल है। अब तुम अनंत काल तक शिव लोक में रह सकते हो।
1: आपकी जय हो मातेश्वरी, जय हो।
3: हे सूत जी, चंचला और बिंदु की मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ।
4: हे शौनक मुनि, चंचला और बिंदु की ये कथा शिव पुराण की महिमा को बताने वाली है। संसार के सभी मनुष्य शिव पुराण की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।
5: शिव महिमा। अभी आप शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। लेखक और निर्देशक थे अनिल सूद, संगीतकार राजीव हक्सर, गायक स्वर मंजीत सिंह, दीपा रॉय, गणेश विद्यालंकार और बलदेवानंद सागर। भाग लेने वाले कलाकार थे गौरव मारवा, अजय मनचंदा, केदारनाथ, जयेंद्र, सुरेंद्र सेठी, हर्ष बाला और वीना शर्मा। ध्वनि मुद्रक थे ऋषि, विकास और विनी। आकाशवाणी के लिए ये कार्यक्रम संचार भारती प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ

कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

और नारी। रास्ता देखे महल अटारी, पूछे अवध के नर और नारी। रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल्या।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

सदार चित्ता। अर्थात हे परमेश्वरी दुर्गे, तमारू स्मरण थता ज प्राणी मात्रनो भय चालू जाए छे। तमे हरी लो छो ए भय ने, सुख समये के स्वस्थ चित्ते तमारू स्मरण करता शुभ बुद्धि आपू छो। शरणागतना दारिद्र्य संकट अने भय ने हरनारा सर्वना ऊपर उपकार करवाने माटे हे माता माता तमारा सिवाय करुणा सभर चित्त वाला बीजा कौन छे। नवरात्रना आ दिव्य प्रातःकालना समयमां चालो चालो प्रातःकाले भगवती कूष्मांडा दुर्गा देवीनू परमेश्वरीनू એનું દુર્ગાનું બીજું નામ ચંડી પણ છે એમનું વંદન કરી લઈએ। દક્ષિણ કાલિકા।

एक श्री माता ललिता जी, ऐश्वरी ना महाराजनी, शोभायुक्त ए सिंहासन ऊपर विराजेला सिंहना अग्नि कुंड रूपी ज्ञान माथी उत्पन्न प्रगट थयेला देवोना कार्य माटे तत्पर साथे चरणमाना नखरूपी चंद्रना किरणों वड़े जनमानसना तमोगुण ने हरी लेनारा बन्ने चरणनी कांति प्रभाथी कमलोनी शोभाने झांकी करनारा ए ललिता देवी ने अमारा प्रणाम।

ये दुर्गा माता सती साध्वी भगवान शिव पर अपार प्रीति रखनारा भवानी संसार ना बंधन माती मुक्त करनारा आर्या दुर्गा जय अपावनारा आद्या त्रिनेत्रा त्रिशूल धारिणी दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करिए।

अर्थात शरद ऋतुना चंद्रना किरणो एमना जेवी उज्ज्वल कांतिवाळा उत्तम रत्नो जेमा जळ्या छे ते मकराकृती कुंडल तथा हार वगैरे आभूषणो थी शोभता दिव्य आयुधो थी ओपता दिव्य नील रंगना हजारो हाथ वाला लाल कमल जेवा चरणों वाला परमेश्वरी श्रीमाताजी नू हूँ प्रातःकाले स्मरण करूँ छू नमन करूँ छू।

अथवा देवी सायुज्यम अप्नुते। भगवती अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका दिव्यदेवी भगवती चंडिका देवीनी दुर्गा देवीनी स्तुतिना आ श्लोको नो जे पाठ करे छे के सांभळे छे अमना सकल मनोरथो पूर्ण थाय छे। अने विष्णु लोक वैष्णवी शक्ति देवी सामिप्य ने ए प्राप्त करे छे अने पाठ करनार नो जय जयकार थाय छे।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

ಔಷಧಿ ನಕಾವು ನಪ್ಪೋಯೇ ವೈದ್ಯ.

Kaşık bunla bacatı kalmaz.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।